0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो